about grievesi anpadvi gaava majja charanda bhagat tanne bare pai gurdas ji ne apni vaar vich is tarah bayan kita hai ki jadon insaan sacche mano उस परमेश्वर की भक्ति करता है, उसका नाम लेता है, तो वो परमेश्वर किस तरह आके मिलता है, जिवें धन्ने नूं मिलिया, भाई गुरदास जी इस तरह बयान करते हैं।

पर पुजारी ना मने ते तरना सी जट तरने नू चढ़ गया गुस्सा ते गुस्से च तरना कहन लगा देखो पंडता हुण तक ते मैं हाथ

जद तक तू रोटी नहीं खाएगा मैं भी रोटी नहीं खानी पावे मेनू भुखिया मरना पवे। साध संगत जेड़े लोग ए गल कहंदे ने किथे रब

आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वन त्रण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जाल ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, धुन आप वजाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तप तापे, आप

आपे धरती आप है राहक आप जमाए पीसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे छिंगा आपे चुली भरावे आपे संगत।

कहूं पवन है के बहे वेग ऐसे कहे मोन आवे कथो ताह कैसे कहूं नाद है के भली भांत बाजे कहूं पारधी है धरे बान राजे।

कतहु सुचे तुह के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत हो के सोवत अचेत हो, कतहु भिखारी हो के मांग तु फिर तु भीख, कहूं महादान हो के मांगो धन देत हो, कहूं

कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देत हो। कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी से, कहूँ इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो। कतहूँ विचार अविचार को विचारत हो, कहूँ निज नार पर नार के नकेत हो। कहूँ वेदरीत कहूँ तासो बपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ।

कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

0: श्रवण करो प्रोफेसर दर्शन सिंह जी दी नवी कैसेट अपना घर।
1: जे वो अपनी मर्जी नाल आनंदपुर दी धरती ते बैठ के अपने जीवन का फैसला भी ना कर सके ओनू उथों ही रोक दिता जाए। जे वो अपनी मर्जी नाल अपनी ही राजधानी दिल्ली विच भी ना पहुंच सके रस्ते।
0: भाई हरजिंदर सिंह श्रीनगर वालियां दी नवी कैसेट

सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सिमृत नाम मने सुख पाइए सिमरो सिमर सिमर सिमर सुख पावो।

मोहम्मद बिन तुगलक ने नामदेव नु पुछया, ऐ नामदेव मैं हिंदुस्तान दा बादशाह, तू मेरे को डरदा नहीं, किदे भरोसे ते तू अपना जीवन

धरती दी पालना करन वाला ऐ बादशाह भगत लोग उस गोपाल राय दी सेवा करदे ने अकुल निरंजन जिदी कोई कुल नहीं जेड़ा माया दे प्रभाव तो उत्ते है उस गोपाल राय दी भगत लोग सेवा करदे ने भगती करदे ने ते ओदे कोलों भगत दान दीजै जांचे संत जन उस गोपाल दी सेवा करके ते भगत

सराय चा बड़ा वड़ा शामियाना है तंबू है केड़ा ऐ बादशाह तू अपनी वास्ते तंबू लवाना है।

धरती एक आकाश दस ए परमेश्वर दा सरायचा है तंबू है इंसान जहाजा ते चढ़ लवे राकटा ते चढ़ लवे कितना भी यतन कर लवे पर इस परमेश्वर दे तंबू विचू इंसान बाहर नहीं निकल सकता ओदे घर विच बैकुंठ है अते सपत लोक समान पूरी आले ए जड़े पताल ने ए ओदे घर विच

लक्ष्मी कुवारी उस परमेश्वर दे घर लक्ष्मी कुवारी है। ओदे हुकम तो बगैर कोई लै नहीं सकदा, जे कोई लै भी लवेगा ते दुखी होवेगा।

मौत है, उस गोपाल राय दे कार खेड़ कर दिए, कदी किसे नु मार देंदी है, कदी किसे नु मार देंदी है। इस करके ओ जिड़ा मेरा गोपाल राय है, जिदे कार सूरज चंद्रमा दीवे तरह ने, मौत जिड़ी है ओ दे कार खेड़ कर दिए, एहो जिया ओ राजा।

हुक्म कर दिता नामदेव नू कैद कर लिया जाए। सत घड़िया का समा दिता, अगर सत घड़िया विच ए मरी हुई गां जिंदा ना हुई ते नामदेव नू हाथी दे पैरां थले लताड़ दिता जावे। नामदेव नू कैद कर लिया, नामदेव दे नाल प्यार करन वाले मोहम्मद बिन तुगलक बादशाह दे कोल गए ते बादशाह नू ए बेनती कीती।

महादेव नु छड़ दे नामे सर पर सोना ले नामदेव दे बराबर तोल के सोना ले ले पर भगत नु कुछ ना कहे।

कैद खाने पा दिता गया, सत घड़िया का समा दिता, पर सत घड़िया बीत गई। गऊ हाली तक जिंदा नहीं हुई, भगत जी आप बयान करते।

ऐ मोहम्मद बिन तुगलक बादशाह मेरी प्रीख्या लैण दा तां फायदा है जे हुण तू भी सच ते चलें किसे नूं दुख ना देवें ते परमेश्वर दी

खुश होके भगत नामदेव ने बहुत सारा सोना चांदी भेंट कीता, पर नामदेव जी ने वो सारा सोना चांदी गरीबां च वंड दिता। आप तुर पए। बादशाह ने एक बड़ा कीमती दुशाला कह लो, सेज कह लो, बड़ा कीमती दुशाला सेज नामदेव वास्ते अपने दरबारियां नूं दित्ती। बादशाह ने दरबारियां नूं कहा, जिथे नामदेव जी बैठन इसे जा नामदेव नूं भेट कर देनी, ते नाले मेरे वल्लों कहना कि बादशाह दी इच्छा है कि इसे जा किसे नूं दान नहीं करनी, ए वछा के तुसा आप उत्ते बैठना है। नामदेव जी तुर पए, नाल बादशाह दे दरबारी तुर पए। नदी किनारे भगत नामदेव जी बैठे ने,

भक्त नामदेव जी ने उस वक्त नदी किनारे बैठ के ये शब्द उचारिया, जे गुरु दयाल हो जाए मुरार कहंदे ने कृष्ण भगवान, ता कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो जाती। अगर गुरु दयाल हो जाए ता उतरे पार इंसान संसार सागर।

अमृत वाणी बोली मिठी हो जाती। जे गुरु दयाल हो जाए पवन त्रैस हो जाए तिना लोगों की सोची हो जाती। गुरु दयाल हो जाए तो इंसान उची पदवी नूं

पर जे गुरु दयाल हो जाए देहोरा फिरे देवरा कहंदे ने मंदिर ता ओ पूरे पत्थर दे बने हुए मंदिर घुमा दिंदा नामदेव नूं जदों पंडता ने नीवी जादा समझ के मंदिर विचों कढ़िया सी ते नामदेव जी मंदिर दे पिछले पासे जाके बह गए सन ते परमेश्वर ने भगत बदले पूरा मंदिर घुमा दिता तो भगत जी कहंदे

गुर देओ अवर नहीं जाए, नाम देओ गुरु की शरण आए। ए नाम देव ऐसे गुरु की शरण विच रहिंदा है, जेड़ा गुरु इन्ना कुछ देंदा है उस तो बगैर ए नाम देव किसी होर की शरण नहीं लेंदा।

बादशाह ने पूछा, भगत जी एक सेजता मेरी है, ए बाकी सेजा कीमती किस दिया ने? ता नामदेव जी कहन लगे, बादशाह जदों कोई परमेश्वर दे नाम ते अपनी कमाई विचों कोई चीज दान करदा है, पेट करदा है दसां नूं आंदी फिरत विचों, ता ओ दान कई गुणा फल के उन्हों मिलदा है। ए सारियां सेजां तैनूं मिलणियां सन, पर तू दान करके शंका कीता, इस करके ए चीजां हुण तैनूं नहीं मिलनियां।

बादशाह उस वक्त हाथ जोड़ के कहन लगा, भगत जी मैं भी बादशाह हिंदुस्तान दा, सारे लोग मेरे को डरदे ने पर तुसी नहीं डरदे। उस वक्त भगत नामदेव जी ने मलार राग दे विच ए शब्द उचारिया, सेवी ले गोपाल राय अकुल निरंजन। है बादशाह तू दुनिया दा बादशाह अज है, कल खत्म हो जाएगा, पर जिहड़ा साडा बादशाह है ओ परमेश्वर, ओ गोपाल, ओ कदी खत्म नहीं हुंदा, उन्नू कदी मौत नहीं आंदी। उसने दुनिया बनाई, खंड ब्रह्मांड बनाए ने।

उस परमेश्वर दे घर की है, भगत जी ने बयान किया। जांचे कर निकटवर्ती अर्जन, ध्रुव प्रहलाद अम्बरीक नारद नेजे, सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बानवे हेला, एते जी जांचे है करी, सर्व व्यापक अंतर अरे, प्रणवे नाम दियो तांची आन, सगल भगत जांचे निशान। ऐ बादशाह, ओ परमेश्वर, इतना ब्यांत है, ए जो मैं दस्या, ए ता कुछ भी नहीं, सब कुछ होता है,

हाथ दोनों गोडिया से रखे नहीं, उत्ते सिर रखे। थोड़ी दूरों रावी नदी पे वगदी, कान जेड़े ने कुछ सुनने दी कोशिश पे कर दे ने। ए बीबी पेंडू अनपढ़ है, पर मन विच रब दा बड़ा प्यार है। तीन दिन हो गए ने इस बीबी नू ए आवाज सुन दे, रोज आंदी ए पति नू रोटी खवाण वास्ते। आवाज विच ऐसी खिच है, इत्थे बैठ के ए रोज आवाज सुन दी। अज तीसरा दिन है, कदी कदी आवाज सुनाई दिंदी, कदी पानी दे शोर विच गुम हो जांदी है। पर जदों आवाज सुनदी है तां मन खिंचिया जांदा है। कहन लगी मना चल के देखा ये गाण वाला कौन है। कहन लगी ढाडी भी सुनी देने, व्याहां दे विच गीत भी सुनी देने, गाई दे भी नहीं, पर एडी मिठी आवाज अज तक सुनी नहीं। चल के देखा भला कौन है गाण वाला।

पति नु प्रशादा छका के दुध गर्म कीता, गड़वे विच दुध पाया, छन्ने दे विच शक्कर पा के कपड़े नाल बन के कड़वा सिर ते रखिया, दुध लैके उस पासे तुर पई जिधर ओ वजंतरी बैठा सी। जद उस जगह पहुंची तो अज वजंतरी का मालक भी नाल बैठा। वो वजंतरी कोई साज बजा रहे है, मालक कुछ गा रहे है। कौन है मालक कौन वजंतरी? मालक है धन गुरु नानक साहब, वजंतरी मरदाना साज बजा रहे। धन गुरु नानक साहब सारंग राग दा

दुख लगनगे इस करके हरी तू बगैर रहो ही ना ताकि दुख लागे ना आन। साहब जी शब्द पढ़ रहे ने इस बीबी ने वो दुध का गड़वा कोल रखे है चौंकड़ा मार के बैठी सिर धरती नाल जा लगा।

पर बेटा नु होश किथे फिर खेया बेटा उठ सिर चुके पर चेहरे दा जलाल ना सहार सकी सिर फिर धरती नाल जा लगा धन गुरु नानक साहब ने हुण कृपा कीती अपनी मेहर दी निगाह कीती क्या बेटा निहाल उठ सिर चुके पर अखां विच हुण नाम दी लाली शरीर मानो हल्का फुल हो गया लूणू दे विचों वाहिगुरु दी आवाज आ रही हाथ जोड़े दुध वाला गड़वा के कीता क्या पातशाह आप दियां दितियां दातां विचों दुध लैके हाजिर होई हैं आप जी इस नूं प्रवान करो सहबा क्या बेटा संसारी लोग तुहानूं दुध पुत्र दी लोड़ हुंदी है दुध तुसी छको पुत्र दा नां लिया फिर मन विच ख्याल आया जे गुरु साहब टुट पैण हो सकदा है इत्थों मेरी झोली भर जावे हाथ जोड़े के पातशाह यह दुध आप दियां बख्शियां होईयां दातां विचों लैके आई है आप जी प्रवान करो गुरु साहबां ने दुध दे तीन हिस्से कीते एक आप पीता एक हिस्सा मर्दाने ने पीता एक हिस्सा इस बीबी ने दुध दा पीता सेवा कीती नमस्कार करके वापस अपने

पति प्रशादा छुआ के दुध लैके धन गुरु नानक साहब जी को आना फिर वापस घर जाना जेड़ा समा वेला बचना घर दे बूहे बंद करके चौंकड़ी मार के मन धन गुरु नानक साहब के चरणों के नाल जोड़ लेना रोज का यही नियम बन।

जिथे गुरु नानक होवे उथे पाप किथे उथे पखंड किथे। ए बीबी उस गुरु नानक दे दर्शना वास्ते जा रही है जिदे दर्शना वास्ते दुनिया तरसदी है ते पिछे पिछे डांग लैके लुकदा लुकदा एदा घर वाला दुधा भी तुरिया जा रहा है। पर धन गुरु नानक साहब कहंदे ने हों वारी हों वार ने कुर्बान तेरे नाम नूं अया काल पुरख मैं वारी मैं बलिहार जाना।

तारी तू बगैर मैं क्यों जीवा, क्योंकि उदे तू बगैर ते जीवना कुछ भी नहीं। गुरु साहब जी शब्द पढ़ रहे ने, ए दुदा दूर सारे एक दरखत दे ओले लुक के बैठ गए देखण वास्ते कि हुण की हुंदा। धन गुरु नानक साहब ने शब्द का भोग पाया, बीबी ने दुध सामने रखे, गुरु साहबां ने दुध दे चार

खेत उदा डोलू लैके नदी च पहुंचे। डोलू पानी का भर के तुर पे, तीन चार कदम तुरे। अचानक डोलू ते निगाह गई ता डोलू विच दुध नजर आया। अखां मल मल के देखदे पर सचमुच दुध है, बड़ा हैरान होया। कहन लगा भरिया ते पानी सी, दुध किवें हो गया। वापस नदी ते मुड़े, नदी वल देखिया, नदी विच पानी डोलू विच दुध, बड़ा हैरान होया। उस दुध नू नदी विच डोल के फिर डोलू पानी विच उतां खा करके चंगी तरह डोलू फिर बाहर कढ़िया, बड़ा हैरान होया। नदी विच पानी डोलू विच दुध, पांच छे कदम उत्ते चला गया। फिर डोलू भरिया, डोलू नदी तो बाहर कढ़े है, बड़ा हैरान। डोलू विच दुध, नदी वाल निगाह मारी ता सारी नदी इनू दुध दी बगदी हुई नजर आई। हैरानगी दी हद ना रही, अपने खूह ते गया, उत्थे भी दुध मिले। जिथे भी गया इनू पानी ना मिलिया, दुध ही दुध मिलिया, ता मान टुट गया। कहन लगा ओ मना, एक गड़वा गुरु नु दुध भेट करके कहना है कि मैं गुरु नु दुध प्यारी।

दोदा कह लगा नहीं पातशाह आप दा दिता बहुत खुश है। महापुरुषा दे तीन बचन होंदे ने, तीसरा बचन कीता दोदिया कुछ मंग लै। ता दोदा कहन लगा पातशाह जे तुठे हो ता ए वर दियो, बहुत सारी जमीन होवे। जिमीदार सी दोदा, बहुत सारी जमीन होवे, लवेरियां मच्छां गावां होन, दो तीन बलदा दियां जोड़ियां होन, सोने मकान होन। साहब जी कहन लगे ये सब कुछ मिल जाएगा, कुछ और मंग ले। कहन लगा बस पातशाह और कुछ नहीं चाहिए। मर्दाना कोल बैठा है, होली जी मर्दाना कहन लगा दुदिया सतगुरु जी तुठे ने नाम दी दात मंग ले, ते जिहड़ी चीज बारे ज्ञान ना होवे ओ चीज आपां लैंदे ने। दोदा होली जी कोलों कहन लगा मैनू तां जमीन मझां गावां चाहीदियां ने, मैं नाम की करना है मेरे किस तों किया। तां होली पर सतगुरां सुन लिया ते नाले हस पए। कहन लगे दोदिया ये सब कुछ मिलेगा, तेरी घरवाली सतसंगण है, तेरी घरवाली दे सदका जा तेनू नाम दी दात भी प्राप्त होवेगी। कई बीबियां इन्ने भागा वालियां हुंदियां ने कि जिन्हां दी सदका कुलां तर जांदियां ने। हुण दोदा भी सतसंगी बन गए, होर भी जिन्ने जिन्ने गुरु नानक दी सोभा सुनी वो भी आण लग पए। जेड़ा भी आंदा है फिर होर किधरे नहीं जांदा। जंगल दे विच आनंद ही आनंद हो गया हर

सगा बख्शिश कीती, बुराई ओदी बख्श दीती, नेकी कीती, ते करोड़िया भी सिख बन गए। रोज आंदा है, संगत करदा है, दर्शन करदा है, बाणी सुनदा है, श्रद्धावान हो गए। और एक दिन करोड़िया आप ही हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहन लगा बादशाह इस सारी धरती आपदी, आपदा हुक्म होवे तां इत्थे मकान बनन,

नानक जाने गुरिया दे नाल नेकी किस तरह करनी ए तां गुरु नानक जाणदा है। इस वास्ते तां उस गुरु नानक नूं चारे वर्ण दे लोक आके झुकदे ने क्योंकि गुरु नानक सारे नाल प्यार करदा है, सारिआं दे दुख नाल दुखी हुंदा है, सारिआं नूं सुख दिंदा है और उपदेश करदा है। ए भाई उस अकाल पुरख दे नाम तों बलिहार जाओ जिन्हें इस संसार बनाया ओदा नाम जपो ताकि तुहाडा जीवन सुखां दे नाल

ये संसार एक वृक्ष है, इस वृक्ष ते सारे ही पंखी बैठे हैं। आप जानते हो कि पंखी अपनी अपनी चोग चुग के जदों सूरज लथ जांदा रात पैन लगती है तो वृक्ष ते आके कट्ठे हो जाते हैं। इसे तरह यह संसार वृक्ष है, 84 लख जूना विचों परमदा परमदा अपने कर्मां दा खट्टिया खांदा खांदा यह वृक्ष रूपी इस संसार ते आउंदा मनुष्या जन्म प्राप्त करके। जिस तरह पिंडां विच शहरां विच हर एक मनुख ने अपना अपना घर बनाया, इसे तरह वृक्ष ते भी अपने अपने आलने बनाए होंदे हन। पंखियां ने वह आके बहिंदे हन ते जां रात बीती सवेरे अपने अपने राही पैंदे हन, उड़ जांदे हन। इसे तरह यह मनुष्या जन्म भी एक वृक्ष है। मनुष्या जन्म पंछी रूप होके संसार ते आउंदा है। मनुख अपने अपने कर्म भोग भोगदा होया, जिन्हां ने ता भाई इत्थे आके अपना जीवन मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईयां तत मिठा बोलदे हन, नेव चलदे हन, अपनी किरत कमाई विचों चंगे पासे भले पासे लाउंदे हन। सास ग्रास नाम जप के जो जांदे हन उन्हां दा आउणा सफल हो जांदा है, ते जेड़े इत्थे आके माड़े कर्म करके जांदे हन उन्हां नूं फिर 84 लख जून दे गेड़े विच दुख भोगने पैंदे हन। इस लई हजूर कहंदे हन भाई ए मनुष्या जन्म प्राप्त होया है, इस नूं जप जप के सफल करना। जिस तरह दिन चढ़दियां पंछी अपनी अपनी चोग चुगन लई अपने अपने कर्मां दा खट्टिया खान लई उड़ जांदे हन, इसे तरह जदों काल रूपी सूरज चढ़दा ते मनुख भी फिर ए पंज भूतक शरीर छड़ के तुर जांदा। इस लई गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे हन किस नाल की चै दोस्ती, सब जग चलन हार किदे नाल दोस्ती करिए। ख्याल कीता हो सकदा कि राजा सुखी होवे पर वो तो सब तो दुखी है। हो सकता है महल माड़ियां विच रहन नाल कोई सुख प्राप्त होवे, वो भी नहीं है। हो सकता है चंगे बस्तर पहनन नाल जां गहने पहन नाल सुख मिल जाए, वो भी नहीं है। क्योंकि सुख तो हरि दे नाम विच है, सुख तां परमेश्वर दी भक्ति विच है। इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे हन सब जग चलनहार।

महाराज जी वाणी चाकते हैं, चार पदार्थ जे को मांगे, सात जना की सेवा लागे, चार पदार्थ जे को मांगे, सात जना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सद गावे, जे को जन्म मरण ते डरे, सात जना की सरनी परे, जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक तांके बल बल जासा। बाबा जी बाणी च आखदे हन नाव रूप भयो साध संग, नाव रूप भयो साध संग, कहिंदे जड़ा साध संगत है ना, ये समझो एक किश्ती दी तरह है कि तुसी एक किश्ती च सवार हो गए हो, नाव मैंने किश्ती, अते जो साध संगत बैठ गया समझ लो वह किश्ती दे विच बैठ गया है, जो किश्ती उसनू इस जन्म मरण दे पव सागर दे विचों पार कर दे। नाव रूप पयो साध संग, तो इस शब्द दे विच गुरु बाबा जी ने दस्या है कि साधु सानू की रस्ता दसते हैं, की मार्ग दसते हैं। बहुत ही सिंपल जवाब देता है, बहुत गौर नाल ध्यान नाल सुनो, मन जोड़ के, हर मार्ग साधु दसिया,

वो कहेगा गुरु का मंत्र जपो, गुरु दे नाल जुड़ेगा, प्रिपेयर करेगा, समझाएगा, कड़ेगा, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता जिज्ञासु ओह गुरु दे मंत्र दे नाल जोड़ सके, गुरु दे नाल जोड़ सके। इस दे विच नुक्ता समझण वाला है, साधु ने यह नहीं आख्या कि मेरा मंत्र जपो, कहिंदे गुरु दा मंत्र जपो। साधु हर मार्ग साधु दसिया कि जपिए गुरमंत्र। हुण इत्थे एक विचार है थोड़ी जी जो समझण वाली है, गुरु मंत्र ओही जपेगा जिसनू गुरु मंत्र मिलिया है, जिसनू गुरु मंत्र मिलिया नहीं है वो गुरु मंत्र जपण दा अधिकारी नहीं हुंदा, उसनू अधिकार नहीं हुंदा, उस दे गुरमंत्र जपे दी कमाई दा जिम्मेवार गुरु नहीं हुंदा जिसने गुरु तो गुरमंत्र नहीं लिया। अते महाराज जी आखदे हन जो इंसान जीवन दे विच गुरमंत्र प्राणी, जो भी प्राणी गुरमंत्र तो हीणा है, गुरमंत्र तो सखणा है, कहिंदे गुरमंत्र हीण जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रश्न है, कहिंदे हन ओदा जन्म त्रिकार है, लहनत है उस दे जन्म दे जिसने हाले गुरमंत्र नहीं लिया, ते प्रश्न है ओदा जन्म पृष्ठ है, विकार है। गुरमंत्र हीण जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रश्न है, अगे कहिंदे कुकर है, सूकर है, गर्दभ है, सर्पन है, काका तुल खल है, कहिंदे ओ इंसान एना जूना दे विच पवेगा, कुकर है, सूकर है, गर्दभ है, सर्पन है, काका है, कुकर है मैंने कुत्ते, सूकर है मैंने सूर, गर्दभ है मैंने गधे, सर्प ने सप, कां, कहिंदे ओ इना जूना दे विच इंसान जाएगा जिस इंसान ने गुरु दा मंत्र नहीं लिया, गुरमंत्र तो खाली है, गुरमंत्र तो सखना। तो साडे वास्ते इत्थे दो चीजां क्लीयर हो रही हैं। नंबर एक, साधु एक ही रस्ता दसदा है कि गुरु दा मंत्र जपो, गुरु दा मंत्र जपो। जे को बचन कमावे संतन का तो गुरु प्रसादी करिए। साधुओं का वचन यह है कि गुरु के मंत्र का जाप करो जितना वध तो वध हो सकता है, तो जिहड़ा इस वचन नूं मन लै वह तर जाए, दुखां चों मुक्त हो जाएगा, गमां चों मुक्त हो जाएगा, तमाम किस्म दियां मुश्किलातां उसके कोलों नस जाणगियां, जन्म मरण का डर उसका खत्म हो जाएगा। साधु एक ही वचन करते हैं, हर मार्ग साधु दस्या जपिए गुरमंत, गुरमंत्र दा जाप करो। पर गुरमंत्र दे जाप करन दे वास्ते गुरमंत्र भी तो होना चाहिदा है ना, ते गुरमंत्र किस तो मिलता है? कोई अपने आप ही गुरमंत्र जाप करना शुरू कर लवे ओदा कोई वाली वारस नहीं है, गुरमंत्र गुरु तो मिलता है। जिहड़ी साडी विचार है पिछले हफ्तों तो आपा पहचानन की चल रही, जदों किसी इंसान के सामने मौत जन्म मरण का भय, जिंदगी दे दुख, जो पिछले किते हुए कर्मा दे नाल असी हुण दुख भोगते हां, इस तो सोझी आ जाती है, ते संगत च बैठ के उसनू ए पता चलता है कि उसने अपने आप नू लभना है, अपने आप नू पछानना है। अजिहियां विचारां सुन के फिर वह सोचता है कि मैं किस तरह अपने आप नूं पहचाना। अपने आप नूं पहचानन दे वास्ते, अपने आप नूं लभण दे वास्ते उसनूं उसदी इमदाद चाहीदी है जिसनूं पता होवे कि तू कौन है। परमात्मा ने सानूं बनाया, परमात्मा नूं ही पता है कि असीं कौन हैं, अते परमात्मा सानू ए राज आप ही गुरु

गरीब नवाज दो पैर दिन दे बीत चुके हैं, आने वाले दो पैर पता नहीं वेखांगा कि ना वेखांगा। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई बाला तू ही मौत नू दूर समझदा है, मौत इतनी दूर नहीं है। फिर दोहा ने हाथ जोड़े ओ मेरा देसाई आप कृपा करो आप दसो मौत नू कितनी को नेड़े समझते हो। ता धन गुरु नानक पातशाह जी ने तनाश्री राग विच शब्द उचारण कीता आख्या हम आदमी हां एक दमी दम आ गया ता आदमी नहीं ते मिट्टी दी तेरी पई है। इतना को ही मनुख दी होंद है के एक गिठ और चार उंगलां श्वास मनुख दा बार आउंदा है, पता नहीं भाई मुड़ेगा के ना मुड़ेगा। ए एक अख दे पलक विच पाना वरत सकदा है, इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे हन भाई इस जल दे बुदबुदे दा कितना कु है जीवन, बस इतना ही है कि मोहलत मौत ना जाना, पल दे विच पता नहीं की हो जाना। इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने शब्द उचारण

नानक सच्चे पातशाह जी ने मरदाने नू दो सोने दे पैसे दिते, आख्या जा एक पैसे दा झूठ लैके आ, एक पैसे दा सच लैके आ। मरदाना बाजार विच पुछदा फिरदा है, भाई एक पैसे दा सच चाहिदा ते एक पैसे दा झूठ चाहिदा। कई अनभोल मनुख अज्ञानी पुरुष माहौल भी करदे हन, भाई ऐसी वस्तु कदी बाजारां विच विकियां ते फिर ये है ही की, झूठ की है ते सच की है ये कौन दस सकदा है। ता एक जिस मनुख दे पूर्वले कर्म भगती भाव नाल भरपूर सन, इसका नाम सी मूल चंद। उदे पास जदों मर्दाना गया, आख्या की चाहिदे, मर्दाने आख्या भाई एक पैसे दा सच चाहिदे, एक पैसे दा झूठ चाहिदे। ता मूल चंद ने एक कागज ते लिख दिता, मरना सच है, और एक कागज ते लिख दिता जीवना झूठ है। जे कोई कहंदा मैं सदा रही संसार विच रहना है, एदे वर्गा झूठ नहीं, ते जे कोई कहंदा भाई ए पता नहीं किस वेले अकाल पुरख दा सदा आ जावे, हम आदमी हां एक दमी ते जाना पवेगा। ए शरीर ता मिथ्या है, ए ता एक दिन मिट्टी दी ढेरी होना ही है। जे कोई कहंदा है भाई ए शरीर मिट्टी दी ढेरी होना है, एदे वर्गा कोई सच नहीं। तो जीवना झूठ है, मरना सच है, इसे लिए हजूर कहंदे अन्ना भाई ए मनुष्य जन्म जप जप के सफल कर लो, पता नहीं दरगाह तो कदों सदा

बहु पर पंच कर परधन लियावे। सुत दारा पे आन लुटावे मन मेरे फूले, कपट ना कीजे अंत नवेरा तेरे जी पहले। जेरी पापा दी खटी तू खट रिया है, जिना विच्चों तेरे अनेका रिश्तेदार, बाल बच्चे घर वाली वरसाउंदी है। याद रख ए लेखा उना कोलो नहीं मंगया जाना, अंत नबेड़ा तेरे जी पैरी दे। एदे अमोलक श्वास जो वाहिगुरु ने तैनू बख्शे, तू उना दी कीमत ही ना जान सकिया। जिवें एक कंजूस सारा जीवन कमाई करता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, ते मन विच सोचदा भाई चंगी तरह धन इकट्ठा करके ते फिर मैं इस नूं भोगांगा, फिर सुख मानांगा। सोचदिया सोचदिया अंत समा आ गया। जदों अंत समा आ गया, जमदूता ने आख्या भाई हुण तेरा अंत समा है ते तू साडे नाल चलना। ता कहन लगा मैं बड़ा धन जोड़े है, बड़िया मेहनता कीतियां हन, बड़े छल कपट करके माया कठी कीती है, मैनू भोग तां लैण दिओ, आ मैनू 24 घंटे दे दिओ, मैं तुहानू 1 करोड़ रुपया दे दिंदा। जमदूता ने कहा एक पल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ए धन उथे चलदा नहीं, तू जिथे गल कर रहे उथे तां नाम दा धन चलदा है। इस कंजूस ने आख्या मैं 5 करोड़ दे दिंदा हां, मैनू कुछ श्वास होर दे। आखिर कहन लगा मैं सारी जीवन दी कमाई जितना भी मैं कमाया है मैं सारा ही दे देंदा हां, मैनू कुछ श्वास उस दे बदले दे दियो। तां जमदूता ने कहा ए श्वास तां किसे भी कीमत ते तैनू नहीं प्राप्त होन लगे। तां कहन लगा फिर मेरी एक मंग है कि मेरी कबर ते लिख देना कि मैं सारे जीवन दे पल छिन कमाई विच धन इकट्ठे करन विच ला दिते, ते सारे जीवन दी कमाई दे बदले मैनू एक श्वास भी नहीं मिलिया मुल। इस तों भाव है कि जितने अमोलक श्वास हीरियां लालां तों भी महंगे मैं जप जप के सफल करने सी मैं व्यर्थ गवा दिते। क्योंकि हम आदमियां एक दमी पता नहीं अखीरला श्वास कदों आवे भाई, जे श्वास दे नाल तू जपया होवेगा ओ श्वास तेरा दरगाह विच कबूल हो जावेगा। इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह

गुरु नानक सच्ची पातशाह बख्शिश कर दिया न पाई पही प्राप्त मानख दे होरिया गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया ए प्राप्त होए हन तेनू अमोलक श्वास ते जितने तक दुनिया विच तू रह रहे है पले पुरशां पासों कोई चंगी गल सुन पले बन ते जे आप बोलना चाहुंदा है ता परमेश्वर दी भगती कर ओदा कीर्तन कर ओदा जस कर ताकि तेरा संसार ते आया सफल हो जावेगा इस लिए जब लग दुनिया रहिए नानक किस सुनिए चंगा सुनिए और चंगा ही कहिए मिज्जत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत जिना नू ए चंगे गुण प्राप्त हन भई उना दा संसार ते आउना सफल सफल हो जावेगा गुरु नानक सच्चे पातशाह।

कर्म की है। सतगुरु अपने सिख नूं परमेश्वर दे नाम दे नाल जोड़दा है। परमेश्वर दा नाम हिरदे दे विच दृढ़ करवांदा है और गुरसिख नूं सच्चे सुख दी प्राप्ति करवा दिंदा है। ए सुख जो नाम दे राही प्राप्त हुंदा है गुरसिख नूं साध संगत दे विच्चों प्राप्त हुंदा है और इस दी प्राप्ति तो बाद जितने भी दुख हन कलेश हन इन्हां सारिआं दी निवृत्ति हो जांदी है। सारे ही संशय दूर हो जांदे हन ते सुखां दी प्राप्ति हो जांदी है। साहिबां दा फरमान है, गुण निधान हर नामा जप पू

जगे और न यह महत्व में अवतारी उजागिर यान कियो तिनके दुख कोटिक दूर गे मथुराज में।

सुन बेद बिरंत विचार रहो हर जप न छाडो एक करी। मथुरा गण को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्टि।

आप साजियां ने आपे ही दम खलोवा आपे पट्टी कलमिया आप लिखन हारा हुआ सब।

प्रहलाद जब तुझ राख ले हर जियो हर नाक शुमार बजाया गुरमुखान पर तीत है हर जियो मन मुख भरम भुलाया।

शुरू है तो कुल इच्छा है जो गुरु रूप से कुछ आदमी फिर की स्मृति है जन्म चलो मार गुरु मिटे पाप जब भी हर प्यार सत्सर्ग

0: सुहावा ज्ञान तो जस गावे जैसे अठ सठ तीर्थ परस किए जैसे अठ सठ तीर्थ परस किए जुग चार चढ़ो कैलाश
1: जिन्हां गुरमुखां दे कदम सत संगत वाले चल के जाते हैं। किड्डा वड्डा महात्म भाई साहब भाई गुरदास जी ने दस्या है कि जो गुरमुख जन सत संगत विच बह के जपते हैं सतनाम, संगत विच बैठ के वाहेगुरु जपन का किड्डा वड्डा महात्म है, पर एक शर्त है कि जपे गुरु चरणा दे नाल मन नूं जोड़े। जैसे अठ सठ तीर्थ पर